सुन वड्डा आखै सब कोए के बड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराक्षस का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा।

अकलपवन केसर जनहारे दास जान मोहे लेहो उबारे कब्यो बाज बेंती चौपई हमरी करो हाथ दर इच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दोस्त सब तुम काव हो आप हाथ दै मोहे बिचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें तो छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सतर हम

सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। कटकट के अंतर की जानत, पले ब्रे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सा पर कृपा दृष्ट कर फूला।

संबत 17 है सहस पणिजय अर्ध सहस संतीन कहिजय पादर्व सुदी अष्टमी रववारा तीस तदर्व ग्रंथ सुधारा इत श्री चतुर्।

भगिन सो। महाकाल रखवार हमारो, महालोह में किंक थारो। अपना जान करो रखवार, बाहीं गेहीं की लाज बिचार। अपना जान

प्रथम तरो भगवत को त्याना बहुर करो कपिता बेदनाना कृष्ण जथा मच्रितुर उचारो चूक होए कबले हो सुधारो कभी ओ बाचे दोहरा।

से कोट इंद्र ब्रह्मा के तेरव ससक्रोर जले से दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत सुरग बास रग पर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो यह कथा सुने अर्गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिस्न भगत की ए फल होई आद ब्याद छ सके न कोई संवत सत्र है सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन।

आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतकुरता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइया राग रतन परवार परिया सबद गावन आइया।

अंतर गुर आराधना जिह जप गुरना नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरना सतगुर से तीरथ

ज्ञानी निर्मलति निर्मला जय सिंहलाग जला ब्रह्म ज्ञानिक मन हु प्रगा जय तारू प्र ब्रह्म ज्ञानिक मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानिक नह अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊचा मन अपने सौदी नीचा ब्रह्म ज्ञान सी जन पय नानक जिन प्रभाव करी ब्रह्म ज्ञान सकल की नया तुम रह ब्रह्म ज्ञानी ची नया ब्रह्म ज्ञानी की सब प्रमाया ब्रह्म ज्ञानी ते काश ब्रन पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञान की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ती मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपराह ब्रह्म ज्ञान का नह बना ब्रह्म ज्ञान का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञान पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञान का नाह तंदा ब्रह्म ज्ञान रितावत बंधा ब्रह्म ज्ञान का हु सुफला ब्रह्म ज्ञान सुफल फला ब्रह्म ज्ञान संग सक्रियोधा नान ब्रह्म ज्ञान जप सक्र संसार ब्रह्म ज्ञान का इकारंग ब्रह्म ज्ञान का बस प्रभ संग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम प्रवाह ब्रह्म ज्ञान सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञान अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञान का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञान का कर सदानंद ब्रह्म ज्ञान सुख सहज निर्वाह नान ब्रह्म ज्ञान का नहीं बिना ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का बीता ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुआ चिंत ब्रह्म ज्ञान का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञान जिस कर प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बड़ प्रता ब्रह्म ज्ञान का दर बड़ पागी पाई ब्रह्म ज्ञान का बार बार जाइय ब्रह्म ज्ञान का जहमेश्वर नान ब्रह्म ज्ञान आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत नाहि ब्रह्म ज्ञान का सकल मन वाहि ब्रह्म ज्ञान का कौन जान पीत ब्रह्म ज्ञान को सदा देह ब्रह्म ज्ञान का कथिया न जाया दाखिर ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान की मित कान बुखान ब्रह्म ज्ञान की गत ब्रह्म ज्ञान जाना ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पा नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साध जीवन हिमरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ कनाह ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरहात ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार ब्रह्म ज्ञानी अव निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नान ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धन सरोकुर तार जो अंतर्नाम शर्मा पीख भगवान ठाकुर नमस्कार नानक हुआ परस तारास्पदी मिथ्या नाह रसना परस मनवा पीत निरंजन दर्स पार त्रिय रूप न पीख नेत्र साधु की टहर संत संहित करना सुन काहु की निंदा सवती जाने आवस्त मंदा गुरु प्रसाद भिखिया पर हर मन की बाह न मंदिर टर इंद्रिय जित पंज दुहते रहत नानकुण मध्य कुआसा पर वै सुनो सो जहु पर सो प्रसान बिजन कुमाय तुह पिन कर्म कर दो नह करम नह वै सुन का निर्मल तरु काहु फल की इच्छा नह वै छ केवल भगत कीर्तन संग्रह चाय मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब प्रोत कृपा लाभ दृढ़ावर नाम जो पावे नानक हो वै सुनो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत कर अंग सकल त्याग दुष्ट कर संग मंत्र बिन सा सकल परम कर पूजा सकल पार ब्रह्म साध संग पापा मन कुवैध भगवती की मा तू तम हुआ भगवंत की ग्रहण कर नित नित मंत्र नर पावे सन प्रीत हर के चन हृदय वसा नानक भगवती भगवंत का पावे सो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म सोध राम नाम सार रह पीवा पंडित का उपदेह जग जीव हर की कथा हृदय वसा सो पंडित फिर जो अन्ना वेद प्राण समृत पूजा मूल सुख मह जाने स्थूल चह वर्णा को दे उपदेश नानक पंडित का सदा दिए स बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चह

प्रभु का सेवक नाम का रंग सेवक का प्रभु पालन रा सेवक के राखन रंग कारा सो सेवक जह दया प्रभु तारा नानक सो सेवक सहसा सुमार अपने जन का पर दाटा के अपने सेवक के सर पर राख अपने दाख की बढ़ाई अपने सेवक का नाम जपाय अपने सेवक की आपात राख है ताकि घात में कोई ना लाख प्रभु के सेवक का कुगना पाहू जय प्रभु के सेवक उच देव जय जो प्रभु अपने सेवा लाया नानक सो सेवक दह देह प्रगटाया नीकी कीरी महकाल राख पसम करा लस्कर को राख है जिसका शासन काट दे आप ताको राख दी कर हाथ मानस जतन कर दवा पाए उसके कर्तव्य व्यर्थ जात मारा न राखे वना कोई सर्व जिया का राख सोई काहे सोच कर हरि प्राणी जपना प्रभ राख बड़ाणी बैरंग बैर बैर प्रभ जपिया पी अमृत हमान तंत्र पिया नाम रतन जिन गुरु पाया ते उसकी शबर नाहिं दृष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुख नाम का संग नाम राह जो जंत्र उतर मंत्र नाम नाम समानी उठत बैठ सुबत नाम कहना जन कर सदकाय बुला जह जिह दिन रात प्रभ अपने जन की नींद आद ग्रह भगत आत्म के चाय प्रभ अपने सिंह रह समाई जो हुआ हुवत सो जान प्रभ अपने का कु पछान की महमा का अनुखा न दसका गुण कही कना जानो आठ पैर प्रभ से हजूरे कहना से जन पूरे मान मेरे तिन की ओट ले ही मन तन अपना तिन जान दिह जिन जन अपना प्रभु चाहता सो जान सरत हो कर दाता दुख के शरण सर सुख पाए बंध का दरस पा मिटावे और श्याम सगरी छाट दिह जन की सेवा लाग पावन जान हुई तेरा नानक तिह जन के पूजा साध पैरा श्लोक साध पुरख जन जाने साधु गुरु दस का नाम दस का संग से खुद रह नानक हर गुण का अष्ट पदे साधु गुरु सिख कर अपराध पार सेवक गुर सदा दयाल सिख की गुरु दुर्मत माल हिरा गुरु वचन हर नाम उतरा सबु सिख के बंधन काटा गुरु का सिख बुकार दियाटा सबु सिख का नाम तान दी गुरु का सिख उठ पाएगी ही साधु गुरु सिख का हरत पल दसवार नानु साधु गुरु सिख का जी अनाज सुमार गुरु का गृह सेवक जो रह गुरु की आगा मन मन सह आप कार काशना जनावे हर हन अवृत सत्य आवे मन विचार सतगुरु का पाद दे सेवक के कार्य राय सेवा कर दो निह कामी दस कहोत प्राप स्वामी अपनी कृपा सब करिय नानक सो सेवक गुरु की माधुरी बीस विश्व गुरु का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गात जान सो साधु गुरु जिस हर नावन कुबार गुरु का बल जाय सर्वनदान जी का दाता अठ पहर पार ब्रह्म रंग रात ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म ई कहे आव नहीं कहे परम सह सो सियान प्रया न जाइय नानक ऐसा गुरु बुढ़ पागी पाई सफल दर्शन पीखत पुनीत पर सत चरण गात निर्मल रीत पीठ संग राम कुन रवि पार ब्रह्म की दर्घ कवे सुन कर वचन करन आग हनी मन संदोखा तुम पति आने पूरा गोरे उखिया उजा का मंत्र अमृत दृष्ट पीखा वे संत गुण भी अंत कीमत नहीं पाई नानक जह पावे तहलय मलाय जिह भाई को एक साथ पुरख पूर्ण भी काहु पूर्ण न पहुँचत प्राणी अगमय गोचर प्रभ निर्वाण निराहार निर्वैर सुखदायता की कीमत गना न पाई अनुक भगत बंधन नित कर है चरण कवन हृदय सुमर सदगुर हरि सदगुर अपने नारंग जह प्रसाद सप्रभ जब नि पावे जन को अमृत पीवा अमृत सो हो पुरख का ना ही कति विनाश जाके मन प्रगटी गुणता साठ पहर हर का नाम लिय सच उपदेश सेवक दे मोह माया का संग लीप मन महरा के हर हरि कांत कर दीपक प्रगा सी नानक परम मोह दुख तह देना सी तब तुम्हारे ठांड वरताई अंध पै दुख नाठी पाई जन मन के मिटे अंध से साधु के पूर्ण उपदेश पा चूका निरपा हुई बस सकल व्याध मन दिखाया न सी इसका साधन कृपा तारी सत्संग जब नाम थित पाए चुके प्रभु गवन सुन नयन हर हर जा श्रम निर्गुण आय सरगुण पियो ही करा तार जिन सगरी मोही अपनी चरत प्रभाव बनाए अपनी कीमत आप ही पाए हर बिंदु जा नाही को सर्व निरंतरी को सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पाए प्रकाश साध कर संग राच रचना अपनी कल तारी अनक नानक बल हरि श्लोक साथ न चाल बिन भजन बिख्या सगरी शार हर हर नाम कमावना नानकी हुतान सार अष्टपदी

तन संच हुव भगवंत संत जनकन रुनवंदी का सराखो मन माही सर्व रोग नारन कुट जाह जिस तन का उचार कुं टूठ तावे सो तन हर शिवति उपाव जसो कनत वंश मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को कर पलि करण सा शोभा पज हर की शरण अन के पावि रोग न जाय रोग मिट हर वखत लाय सर्व निदान हर नाम निदान जप नाम दर्घ प्रवान मन प्रबुद्ध हर के नायक दह दह ताव ताव ठाय ताको विघ्न लग पूजा करदा बस हर सोई कलता दि ठंडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाव पाव बिन स पूर्ण हो सुभगत भय आत्म प्रकाश तित कर जाय बस अवनासी कह नान काट जम फासी तद विचार कह जन साचा जन्म मर सुखा चुका चा आवागमन मिटे प्रभु शिवाव त्याग शरण कर दिए व्यम रतन जन्म कहु उदार हर हर सिमर प्राण आधार अन के पावन छूट न हारि सिमर साथ वेद विचार हर की भगत करो मन लाय मन वंश तन अनुपर पाई संग न चार तीरा तना तुम के लपटावे हम बूर्ख मारा सतमीत कुटाम बर बंत

दयाल सब गुरु बुद्ध कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहु व्याप उपरत पाल जीवन बापात जो जो रजो सोत सहत्या जह पवित हरि मलाई भगत करिहार के गुण गाय मन अंतर विश्वास करमान्या करनार नानक एक जानिया जन लाग हरि कहनाय तिस ज्ञासन बिरथी जाय सेव को सिवा बनाय कुंभुज परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जा कमन बसे अनरंकार बंधन तोर पै निर्वैर आन दिन जहंगुर के प्यारी लोग सुखी पर लोग सुखी ले नानक हर प्रव्याप मेरे साथ संगमिल करो आनंद गुण गाव पुरा परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो अंधार अमृत बचना गुण गाय उपरा अंतरन कह स्वाभाष भर प्रापी खनेरा मिटया ज्ञान बिंस अंधेरा सुनब दे हृदय साव मन छे नन खल पाव हरत पद तो दिहु स्वा राम नाम अंतर वरतार पूरे गुर के पूरी दीखिया जह मन बसा दस साज प्रीखिया मंत नाम जप लिवलाय दूह दर्द मंत्री पाव जाई

सूजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत गट गट व्याप्रह भगवंत तरन वह आकाश पार सर्वलोक पूर्ण प्रात पार वन तन पर्वत पार ब्रह्म जयसी अग सकम पावन पाणी वह संतर वाह चार कुंट दह दिशे समाह दिश दीपेन नहीं कोठा गुरु प्रसाद नान सुख पाव वेद प्राण समृत में दीख शशि अर सूर नख यात्र एक बाणी प्रभु के साको बोलया व डोल न कहूँ डोला सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइया गुण है अमोल सर्व ज्योत में जाके ज्योत तारह स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नाह नानक दिन मह हु संत जन का पीख सब ब्रह्म संत जन का हृदय सब धर्म संत जन सुन सौ वचन सर्व व्यापी राम संग्रह चन जन जाता दिख रह सात वचन साधु साहु कहत जो जो हुए सोई सुखमाय नय कर्म करावन आर प्राव जाने अंतर बस बाहर पियो नयन दर्शन दिव सामोह सद किया सब सात देव प्राप्त शक्ति उत्पात

पूरा पाया, पूरे के गुण गावष्टपदी, पूरे गुरु का सने उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पीख, सा सा सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरा चेंद, आस अनियत त्याग तरंग, संत जन की दूर मर मांगा, छोड़ बेनती करहो साध संग, अगन सागर तरहो, हर तन की पर लिखु भंडार, नानक गुरुपुरी नमस्कार।

छाड़ के गयो तुहारु द्वार, बाहें गहें की लाज अस गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सह से ती मनोजियां। वधाइयां राग रतन परिवार परियां, शब्द गावणियाईयां सब दोतां गाव हो हरी के राम अंजनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ये मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले, हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण। अंगीकार ओह करे तेरा कार, सब सुवारना सब नांकलना समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले, साचे साहिबा क्या नाही, घर तेरे करता तेरे, सब कुछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत साला तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द पनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही, घर तेरे साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शान सुख मन आय वस्या, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुरबान कीता गुरु विट हो, जिस दियाँ यह वड़ियाइयाँ। कहे नानक सुनो संतो सब तरु प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सपागे, कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तू जिन को से नाम हर कह लागे। कहे नानक तह सुख होआ, तित कर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देहनी माणी, देहनी माणी लिवे बाजो, क्या करे विचारिया। तुध बाज समरथ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया, एस नो होर थाउ नाही, सब लाख सवारिया। कहे नानक लिवै बाजो, क्या करे विचारिया। आनंद आनंद सब को कहे आनंद, गुरु ते जानिया जानिया आनंद। सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा के लिए कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदर रोजन का मुँह टुटा तनका, शब्द सच्चा सवारिया। कह नानक इहो आनंद है, आनंद गुर ते जानिया, बाबा जिस तू देह सोई जन पावै, पावै ता सो जन देह, जिसनों होर क्या करे विचारिया। एक भरम पुलै फिर देह दिसक, नाम लाग सुवारिया, गुरप्रसादी मन भया निर्मल जना भाणा पावै। कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावै, आवो संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी, करह कहानी अकथ केड़ी किच द्वारे, पाइए तन मन धन सब साव। गुरु को हुक्म मन पाइय, हुक्म मन हो गुरु के रागाओ, सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संत हो, कथ हो अकथ कहानी। हे मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने ते, तू सुन मन मेरिया। चतुराई ना पाया किने, तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहन जितेत परम पुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया। कुरबान कीता ते सह विटो जिन मोह मिठा लाया। कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया, ए मन प्यारे तू सदा सच संभाले। कुटुंब तू जे देखदा चले नाही, तेरे नाले साथ तेरे चले नाही, तिस नाल क्यों चित लाई। ऐसा काम मूले ना कीचै, जित अंत पछोताई है। सात गुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम गोचर तिरंत न पाया, तू ना पाया किने तेरा अपना आप। तू जान जी जन सब खेल तेरा, क्या को आख वखाण, आखे ता वेखे साब, तू है जिन जग तो पाया। कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया, सोर नार मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा किनी, सच्चा मन वसाया, जी जन सब तुद पाए, कवेख परसन आया। लभ लोभ ओंकार चूका, सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगताह केरी, बिखम मार्ग चलना। लभ लोभ ओंकार तज तृष्णा, बहुत नाहीं बोलना, खनेहो तिखी वाल उनकी, मार्ग जाना गुरप्रसादी, जिनी आप तहर वासना समाणी। कहे नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली, ज्यों तू चलाए है तिव चलहै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए है तिवै चलै, जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा, जिन नाम लाए से हर हर सदा त्याव है। जिसनों कथा सुना है अपनी से, गुरुद्वारे सुख पावे। कहे नानक सच्चे साहिब ज्यों पावे तिवै चलावे,
ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਭ ਸੁਹਾਵਾ ਸਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਦਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰ ਹੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਕਿਨੇ ਰਹਿ ਕਰ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰਤਿਆਇਆ ਹਰਤਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟਾਮ ਬੁਰ ਸਹਿ ਸਿਓ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਭਾਈਆ ਕਹਿ ਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜਨਾ ਉਪਜੇ ਵਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਿਸੇ ਜਲ ਸਹਿਸੇ ਜੀਓ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਧੋਵਹੁ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੇ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਵ ਜਾਏ ਜਿਹੋ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੋ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਜਿਨੀ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਤਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲਗਾ ਮਰਨ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣ ਹੈ ਨਾਹੀਂ ਫਿਰੇ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਹਾਰਿਆ ਜਿਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੋ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀਂ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੇ ਹੋਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਸਮਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪ੍ਰਣੇ ਗੁਰ ਬਿਨਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਬੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨੇਕ ਚੂਨੀ ਭਰਮੇ ਆਵੇ ਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸੁਣਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਆਵ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਾਓ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਅਸਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪੇ ਹੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ

सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी संत साजन भए सरसे, पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रह।

आसु जगी जत कुसाई नील वस्त्र पैर प्रमाण मलेता ने पूज प्राण अपाख्या का कुछा बकरा खाना चौकी उपर किसी न जाना दे कि चौका कड़ी कार उपर बैठे कुड़ियार मत पिटे भी मत पिटे अन साडा पिटे अन पिटे फेड़ करे।